0: एक पूरे जट ने भेजा सी दल बिदार जिहड़ा घोड़ा सी महाराज का पहला ए दूजे का नाम सी दल शिंगार ए दल बिदार एक है बेगी एक नीला सतगुरु के घोड़े बदलते रहे जदों चंगा घोड़ा आया सोहना इस प्रकार के नाल महाराज ने वह घोड़ा हुक्म किया कि लैके आओ
1: मिष्ट कृत को रातव करो अब लो पली पांत प्रित परो
0: हुण उह चंगियां निहारियां खवाइया चंगा घ्यो आदक जां देना जां मिठा पा के देना ऐसिया निहारियां खवा के सोहनी पालना कीती होई सी
1: आज पाए कर दीन शिंगारो भूखन करन हमेला डारो
0: महाराज कहने अज पाई उहदे ते सोहनी काठी पाओ ते उहदे गले दे विच जिहड़ियां हमेलां हुंदियां ने गहना हुंदा गल दा सजा के चंगी तरह घोड़ा लियाओ
1: कंचन के को जेवर पहरावो पले तैयार करके ले आवो
0: सोने दे सोने गहने पाओ भले तरीके नाल साडा जिहड़ा घोड़ा है ये तैयार करके ले आओ
1: हुक्म मान सेवक किए त्यारा अलंकार कंचन शिंगारा
0: हुक्म मान के सेवक ने सोहने गहने पाए जिथे जिथे तक सजा सकते सी गुरां दा सुंदर घोड़ा सजाया
1: कलगी धरी सीस पर खरे लूल हमेल सजावन करे
0: कलगी सोहनी जिहड़ी सी उह सजाउणा कीती घोड़े उहदे वी कलगी लग जांदी सुंदर अते लूल हुंदे ने मोतियां दे छब्बे तो इस प्रकार दे नाल अरबी दा अखर होण करके मोतियां दे जिहड़े सोहणे छब्बे सी उह लाउणा कीते जां मोती लटकाउणा कीते हन
1: कबका दे कर लियायो तहां प्रभु बिराजे बैठे जा
0: सोहणी लगाम पा के घोड़े नूं उत्थे लै आया जिथे सतगुरु महाराज

0: महाराज ने देखा कि घोड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर है, सुडौल है, चंचल है, फुर्तीला है। इस तरह घोड़े नूं देख के, शस्त्र नूं देख के, एक तैयार पर तैयार सिंह नूं देख के, इस तरह सतगुरु जी बड़े खुश होंदे हन।
1: उठ करना निद तब चल आए, एक रकाब पग पंकज पाए।
0: कृपा दे के जाने सतगुरु जी उठ के उस वक्त आए ने, घोड़े दे एक रकाब दे विच अपना जो चरण है खब्बा चरण पा के घोड़े दे उपर चढ़न दी तैयारी विच हन।
1: ग्रीव केस गै है के जवै, उकसे उपर चढ़बे तवै।
0: ये जेड़े घोड़े दे गर्दन दे उपरले पासे वाल हुंदे ने, इन्हां नूं पकड़ के चढ़िया जांदा है। महाराज ने जदों उहदी गर्दन दे वाल पकड़े अते रकाब विच चरण पाया, जदों घोड़े दे

0: महाराज जी ने उस वक्त तो पहला घोड़े नू हौली हौली तोरिया, तोर के चंगी तरह फिर एकदम तेज घोड़े नू भजाउणा, सूरज वल नू मूंह करना, भजा भजा के हफा देना, इस तरह फिर घोड़ा ठीक हो जाता है।
1: बहुत आए कर भले फंदायो, पुनजनी मंदर प्रभ आयो।
0: घोड़े नू भजा के फंदाया, चंगी तरह छाला भी मरवाइया, वो घोड़े नू भी पता लग जाता कि बंदा तकड़ा जिहड़ा मेरे उत्ते कोई भी बैठा है कैसा है, किन्ना क जानकार है। वो भी समझ गया, क्यों गुरां दे जदों सुते सिद्धी सतगुरु जदों चरण पा के उत्ते बैठ गए तां घोड़े नू भी पता लग गया कि मैनू किड्डी महान सेवा मिली है। पहला मैं अपनी बड़ी मूर्खता कीती, अंदरे पछताउंदा है। सतगुरु महाराज घोड़े नू इस तरह घुमाउंदे होए आके उत्ते महिलां दे सामने माता

0: युद्ध विच टेके लड़ो जाओ फिर हुण जंग विच जित प्राप्त होवेगी।
1: अतो रिपन दल को दलो पकड़ो शस्त्र क्रुद
0: जाओ जाके मैदाने जंग दे दुश्मन नु मारो ते अपने हत्थां दे विच शस्त्र पकड़ लो वीर रस विच आ जाओ ते जंग करो। यां गुरां ने हुण वचन करता हुण रक्षा भी करनगे। जे इन्ना कदा खिचण फिर आपां सिद्धे भी नहीं हुंदे। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे भाई गुरां ने जो वचन कहा है वह वचन जरूर कमाया करो। माड़ी मोटी ढिल दिखाउणी चंगी नहीं। इस तरह फिर आपां नूं घाटा पैंदा। जिन्हां जिन्हां ने भी गुरु के वचनां दे उत्ते पहरा दिता एक एक वचन नूं कमाया है उन्हां नूं सतगुरु महाराज निहाल कर दिता है। हां जे कोई अवग्या हो जाती तां माफी मंग लो। यही दस्या है माफिया मंग लिया करो। सवेरे दुपहरे शाम रात महाराज तो माफी मंगते रहो। महाराज मेहर करो सातों को गलती हो जाती है सौ गल्लां हो जांदियां ने सातों पूरी रहत नहीं कमाई जाती। हां थोड़े सिख ही आ पर नहीं कई बार साढ़े को ढिलाइया हो जांदियां ने। इउं सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह तो माफिया मंग लईए कि महाराज असी इन्ने योग नहीं हां सानू बख्श लो। इस तरह महाराज अगे हाथ जोड़ के बेनती करिए

0: महाराज ने भजन किया कि खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है, युद्ध विच टिक के लड़ो, हुण जाओ फिर जे साड़ी आस तकी है फिर पिछे ना दौड़ो, टिक के जंग करो।
1: हतो रिपन दल को दल पकड़ो शस्त्र न क्रोध,
0: क्रोध हुंदा क्रोध दे नाल वीर रस दे जा के शस्त्र पकड़ो अते दुश्मनां दे दल नूं मारना करो।
1: चौपाई सुन सतगुर के वरसां बैन,
0: सुन के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जिहड़े वार वर गए बचन सन वरसम, यह वर हो गया खालसे नूं, भावें गलती हो गई एक पर एक इन्ना वड्डा वर देना कि खालस गुरु गुर खालसा भाव के खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है, एदी सिंघां नूं बड़ी खुशी होए।
1: हट्यो खालसा रिस कर नैन,
0: खालसे ने फिर जदों देखिया कि हुण वचन हो गया गुरां दा कि बहुत वीर रस विच आओ अते जंग करो, वापस मुड़े पहाड़ियां वल नूं, बहुत वीर रस अखां विच लालियां, शस्त्र पकड़ के फिर टुट के पै गए।
1: धर ज्वाला बमणी अरदमणी,
0: ज्वाला बमणी जिहड़ी बंदूक हुंदी है पावे दा नाम ज्वाला बमणी, दुश्मन नूं मारन वाली।
1: चोरी गुलका गण रिपो समणी,
0: रिपो तो भाव दुश्मन नूं शमन करन वाली, नाश करन वालियां गोलियां फिर खालसे ने चलाईयां।
1: श्री गुर थिर हवै तनुख संभारे,
0: महाराज जी ने जदों देखिया कि हुण खालसे ने अपनी भुल बख्शा ली, अपनी गलती का एहसास किया है, उस वक्त गुरु ने अपना तनख बाण संभाल लिया।
1: सपत बाण ऐचन कर मारे,
0: महाराज ने सत तीर आसमान वल नूं चला दिते।
1: परी गगन में गर्व गुंजार,
0: आकाश दे विच बहुत भारी गुंजार होए जिवें बदल गरजदा बड़ा भारी।
1: बेसमाने रिप सुन तुंकार,
0: जदों इस तरह आकाश विचों आवाज आई गरजने दी दुश्मन बड़ा हैरान होया सुन के।
1: एक ही बार हटे सब सिंह,
0: एको ही वार सारे सिंह हटे भाव पिछे नूं, दुबारा जिहड़े इधर नूं मुड़े आ रहे सन पिछे नूं वापस पहाड़ियां वल नूं
1: मिल गए। ज्यों भूखा सिंह,
0: जिवें मिर्ग नूं देख के भूखा शेर पैंदा है टुट के, इस तरह खालसा वध्या है।
1: अगर जो मारत आवत ताए,
0: अगे जिहड़े मारदे आउंदे सी धा के दौड़ के,
1: कितक हते को मार हटाए,
0: किन्ने क तां सिंघां ने पहाड़िए मार दिते अते किन्ने क मार के भजा दिते।
1: तोमर सेले सांग परहारे,
0: ये सारियां इको ही किस्म बरछे दियां ने, तोमर ते सेला ते सांग, सोटी का फर्क है, उहदी डांग दी लंबाई का फर्क है, इसे प्रकार उन्हां दे अगे दे फल का फर्क है, देखण नूं इको ही चीज लगती है। सो इस तरीके नाल लंबे बरछे छोटियां बरछियां तो लंबे फल वालियां बरछियां मार मार के भजा दिते।
1: सिफर अगर कर किस कग मारे,
0: कईयां ने अपनी तलवार दे नाल मारे, ढाल दे नाल अपनी बचाओ कीते।
1: गुर बचते शहीद गन दौरे,
0: जदों महाराज जी ने सत तीर आसमान वल चलाए तां शहीद सिंह जिहड़े हुंदे ने आकाशी फौजां जिन्हां नूं कहिंदे ने ओ सारे दसवें पातशाह दे हुक्म विच चलदे ने, करोड़ां दी गिणती च ने जो सृष्टि नूं चलाउण वाले ने। सो महाराज दा हुक्म पा के बहुत सारियां आकाश विचों फौजां उतरियां।
1: परे हेल कर फेरे पबारे,
0: जदों उन्हां दा हल्ला होया दुश्मन इउं हो गए जिवें बौले हो जांदे ने, इन्ना जबरदस्त हमला हो गया।
1: मची मार दीर्घ इक बारे,
0: बहुत दीर्घ मार मची, बड़ी तगड़ी मार मचाई शहीदां सिंघां ने आके।
1: مر مر پرتے پائے پسارے
0: مر مر کے لمے پی گئے پائے اپنے پیر پسار کے اسی وقت ہی انہوں کا تو بار نہیں چل سکتے وہ جی ایک برچھا مارن سو سو بندہ کٹھا ہی ڈگتا ہے
1: جنم لنگ بھگے کو کھائے
0: مانو کے جی

0: ब्राह्मण होए महाराज वेले उन्होंने फिर महाराज की सिक्खी ग्रहण की शुरू तो लैके। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह कहने जे कोई ब्राह्मण चरण पहल हुण लै लई, केस भी रख ले, दाड़ा भी रख लिया, उन्हें चरण पहलिया है, फिर जे कोई गुरु घर नाल प्रेमी है उहदे नाल आपां फिर वरत सकते हैं इस ढंग दे नाल कि भी ये सिख है।
1: मेरो सिख आन सब त्याग, पीठी ब्राह्मण दान न लागै।
0: होर जेडे मेरे गुरसिखो ऐसा त्याग कर दियो, जेडे हुण आपां नूं मनदे ही नहीं कि गुरु घर नूं नहीं मनदे ऐवें, उन्हां ब्राह्मणां नूं दान देना हुण उह नहीं करना ऐसा, क्योंकि कलयुग दे अंदर ब्राह्मण संपूर्ण रिहाई नहीं है, वह सारे पुठा सीधा खांदे कुकर्म करदे ने। इस करके महाराज ने कहा जिहड़ा गुरु करदा है, श्रद्धालु है, प्रेमी है, किरत होर नहीं करदे, कई ब्राह्मण गुरु घर दे प्रेमी बन गए, गुरु की बाणी पढ़न वाले बन गए, चरण पावलीए बन गए। सतगुरु कहिंदे चलो उन्हां दा तां दान इक वखरा है, उह तां इक गुरसिख है। भाव कहण दा सीधा ही कि गुरसिख जिहड़ा भी बन जावे, खंडे बाटे दा अमर छक लवे, गुर भाई है साडा, उहदे नाल तां वरत वलेवा साडा होना चाहीदा। पर हुण जे तुसीं कहो जी असीं सारिआं नाल ही वरतणा, महाराज कहिंदे हुण नहीं, हुण असीं रोक ला दित्ती है कि होर ना किसे नाल ऐसे नाल नहीं वरतना जो गुरु ग्रंथ साहिब

0: ऐसा करते हैं कि मैं उसे तीर्थां ते जाके दान देना है तो महाराज सच्चे पातशाह कहते इन्हां नूं भी दान नहीं देना पांड्या नूं इत्यादिक वो पिछे जे नौवें पातशाह गए सी गया उथे जां होरना स्थानां ते कहने महाराज सरबंस दान करो महाराज की पालकी भी लै ली होर सारा कुछ ही लै लिया। महाराज दसवें पातशाह ने फिर सारिआं नूं हुण मना कर दिता है किते नहीं जाना होर ना कि उत्थे दान देना ना होर थां ना इन्हां तीर्थां ते जाके पांड्या नूं दान देना कहने गुरु घर दे विच ही देना जो देना इस करके ये गल पक्की कर लो।
1: रहै एकांत प्रीत जन दूर मम विचार सो नित भरपूर।
0: तो साडे विचार गुरबाणी दे विचार इन्हां दे विचार करे एकांत रहे ते प्रीति रखे परमात्मा दे नाल।
1: सिख पुगावै मेरा सिख केस पेस ने मेरो ब्रिख।
0: इस करके सिख पुगावै मेरा सिख मेरा जेड़ा सिख है ना वो सिख नूं ही शिकावे भाव गुरसिखां दी संगतां दी सेवा करे इसे प्रकार केस भेख जेड़े रखे हुए ने वो मेरो ब्रिख बिख तो भाव जहर रूप जिन्हां ने भेस ही केवल बनाया होया है वो तो जहर रूप है उन्हूं खवाउणा ते खाणा।
1: दोहेरा हुए सकेस कै केस बिन मेरा हुए निसंग।
0: हुए सकेस कै केस बिन मेरा हुए निसंग सो सकेस हुंदा सहत केसा दे जां केसा तो बिना मेरा होवे निसंग निसंग होके जिहड़ा मेरा बन जावे।
1: बामण सोई ब्यास सम दीवै दान उमंग।
0: तो वो जिहड़ा है ना केसा तो बिना वो जे केसा वाला बन जावे गुरु घर दा सिख बन जावे वो तां फिर ब्यास वर्गा बन गया ब्यास मुनि जी वर्गा बन गया क्योंकि उत्साह दे नाल कहिंदे असीं कुछ दे सकदे हां ऐसे जिहड़े गुरसिख बन गए हो

गुरु साहब की ही पूजा करनी है सारे कामों के विच सहज पाठ श्री अखंड पाठ साहब गुरु ग्रंथ साहब नूं मनना यह गुरु घर के कार्ज आप करने ने पहला महाराज नूं मनाउणा तरीके नाल विधि नाल विधि तो भाव के जिवें आपां पाठ करते हैं पाठ करने वाले भी आए छेती नाल भी प्रकाश है आए बाहरों पता नहीं कित्थों आए ने आ किताबें बह गए हम भी पाठ करके आए गुरुद्वारे वो विधियां तो थोनों सीखनी चाहिए सारियां नूं ते इस प्रकार नाल महाराज जी तो रोकते ने कई चीजा तो कि ए जेड़े कर्म ने आ करने नहीं इस तरह केसी इशनान का बहुत ने पता केसी इशनान चौथे दिन तो महाराज का हुक्म ही है एतवार बुधवार रख लो दो दिन रख लो मैं करना केसी इशनान करना जा कोई हफ्ते विच ए दिन रखो तो साढ़े जेडे केसी इशनान ही दस दस दिन नहीं करते है तो उदा फिर विषय विकार प्रवृत्त हो जाना वह कई चीजा देखने वाली होंदिया ने इं जड़िया अपने वलों ही कमिया होंदिया ने पाठ करने आपू फल की प्राप्ति नहीं होंगी पवित्रता का बहुत ख्याल रख्या करो जी पवित्रता है आ सरोवर के जाके पैर पा के खड़ जा उ जल छकी जाने यदा की फायदा होया थानू फिर सरोवर साहब के बहरली पौड़ी के पैरों के उत्ते फिर पहला पैरों से पानी पाउणगे फिर अखा से छिट्टे मारनगे वह सारा कुछ सरोवर च सीटी जाने चूड़ा उतों सिर मर्यादा इन्नी आ भी चूड़ा भर के बाहर आके ना जिधर परिक्रमा है उधर मुख करके फिर चूड़ा छको तो पहला जाके सारा कुछ घाला माला ही कर छड़दे हो इन्हां गल्लां दा ध्यान रखो मर्यादा विच जे कायम रहोगे पहला भी महाराज ने दस्या सी मर्यादा दियां लीहां ते जद तक रेलगड्डी चलती है उदों तक वह ठीक रहिंदी आ जदों ट्रेन माड़ी जी इधर उधर होगी सारी उल्ट जाती है इस करके मर्यादा की लीह

0: सुपते निसमय सतगुर मन पावत कर खान अमृत वेला मैं उठी की नो सोच स्नान।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई। गुरु रूप गुरु खालसा साहब संघ जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रही लड़ी व्यार कथा पावन पवित्र प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री आनंदपुर साहब विखे सज के आप संगतान उतार रहे हैं। एक साधु महात्मा जो नग्न अवस्था दे विच चमेली दे फुल अते गुलाब दे फुल लैके मत्था टेकिया है। सो महाराज ने वचन किया इन्हां दी जरूरत नहीं सी, क्योंकि जदों मनां दे अंदरों दुविधा मिट जांदी है सारे व्यापक इक्को ही रूप दिखदा है। उन्हां गुरमुखां दे तां दर्शन ही भेटा है। सो इस तरह फिर होर वचन बिलास किन्ना धाना केड़ी नदी दे पास जमा पिया है। फकीर नूं कहा कि खाली हथ आ जांदे तां वी कोई डर नहीं सी, पर फकीर ने कहा खाली हथ आना तां है वो बंदे दे मन दे अंदर जिवें कालख हुंदी। आमदन वाला हथ जिहड़ा कुछ लै के आवे वो शुद्ध रूप विच सही जीव है। सो इस तरह के वचन बिलास इन्हां संतां दे नाल होए ने। आओ अगे कुछ वचन बिलास कविया गुणिया ज्ञानिया पंडतों नाल कर रहे हैं। जिमें आम तौर पर सतगुरु सभा लगा के बैठते सी, इहदे विच कोई जरूरी नहीं कि गुरसिखी के वचन आउणगे। सुते सिद्धी सतगुरु कविया की जनरल नॉलेज देखते हैं किन्नी क है, किन्ना कि इन्हां नूं ज्ञान है। कई प्रश्न करनगे, चाहे वह प्रश्न साढ़े नाल संबंध रखते ने या नहीं रखते। कविया के ज्ञान परखना उन्होंने जवाब देने ने, उन्होंने जोड़े उत्तर ने उन्होंने सुन के उत्तर फिर सतगुरु दसणगे। नहीं असल में यह गल इस तरह नहीं है, यह गल इस तरह है। कविया के जवाब सुन के उन्होंने भी निरुत्तर करे प्यार सत्कार। आओ श्रवण करते हाँ प्यार सत्कार दर्शनों करिए पवित्र गद के आ

0: चेला होवेगा कोई वह अपने गुरु नूं समझाया करेगा जाके नहीं गुरुदेव यह गल इस तरह तुसी हले बच्चे हो थोनू नहीं हले इन्हां गल्लां दा पता भाव हुण भी तां समझाउंदे ने आके हुण भी तां कहिंदे गुरु ग्रंथ साहिब जा पिछौर सिंह ते प्यारा सिंह अर्गे उठ खड़े होए सी ते आ हुण होर ही खड़े दसम ग्रंथ दे विरुद्ध होर गल्लां कर रहे ने इही जी तां गल है ये कहने इन्हों नूं नहीं पता है असल तां सानू पता साडियां बुद्धियां ज्यादा कम करदियां ने सारी मर्यादा ही पुठी करती इस करके कहने कलयुग दे विच ऐसे कर्म होणगे ते अन्न पावन खाए ते अपवित्रता वाला अन्न खाया करनगे कहने इहदे खाण नाल तां दिमाग चलदा जे ना पीए गाली नहीं चलदा है कई तां इहो कहिंदे ने वी गल मैं कहा तुसीं इह शराब पीने हो कोई बंदे सी आवें शराब पीने कहिंदा आवाज नहीं निकलदी यही तो गल साफ करने वाली चीज है
1: नहन तजे काया दुखी खावे बोर च पाए
0: इस करके कहने ने कलयुग दे विच कैसा होवेगा नहन तजे काया दुखी जे नहाना छड़ देंगे क्यों नहाउंदा क्यों नहीं बस एवं शरीर जा दुखी जा ये की नहा के लेना ते जे उन्हों कहो आ रोटी खा लो आ होर चीजा खा लो कहिंदे कित्थे रोटी महाराज कहिंदे रोटियां खाण नूं तकड़े होणगे कलयुग च चीजा खाई जाणगे सारियां जे कह दो इशनान कर लो फिर उत्थे डिग पिया करनगे मेरा तो शरीर नहीं ठीक है
1: प्रीत थोर खुश मत बचन उधर भरन के काज
0: कहिंदे प्रीति तो होवेगी नहीं लोकां दे विच होर की करनगे कहिंदे पेट भरन लई ना खुशामद करिया करनगे इहदे कोल सानू खाण नूं मिलदा जिथों खाण नूं मिलेगा उत्थे पैरी हाथ तक लाया करनगे गोडी हाथ लाउणगे यह बंदा बड़ा वधिया जिथों खाण नूं ना मिलिया करेगा उन्हूं गालां कढ़िया करनगे
1: नारी मिलना भोग कब ग्रह ग्रह जजिए साज
0: बस इको ही गल मन दे विच होवेगी लोकां दे मना अंदर कलयुग दे विच विशियां दी गल जे तां विशियां दी गल करो फिर तां जिथे गाउण वाले आउंदे ने आ गाने गाउण वाले गाने गाउण वालियां इस्त्रियां उथे दा बेअंत कट्ठ हुंदा ते जिथे कोई भजन पाठ की गल होगी उथों लोग भज्या करनगे जां इक होर कहिंदे ने जिवें सारा दिन बंदा बस विशियां नूं ही चित भी जाया करे कलयुग दे विच वी कदों रात पवे कदों विशियां च परिवर्तित होईए कहिंदे जिहड़े लोग कवि लोग होणगे उन्हां दी जिहड़ी चंगी कविता होगी कलयुग दे विच लोग चंगी कविता नूं सुणिया नहीं करनगे कहिणगे ऐवें फालतू गल्लां करदा जे उही कवि किसी इस्त्री की कविता सुना देवे विशियां बकारां दी भाव माड़े गाने जिवें अजकल चलते ने फलाना गा रहा उत्थे लोग सुन जाया करनगे माड़े गाने ते जिथे कोई कविशरी हुंदी है गुरु घर की गल हुंदी है जिथे कोई ढाडी सिंह गाउंदे ने इह कहिंदे एवें जकड़ियां मारदे फालतू इह झूठियां गल्लां करदे ऐ इह उहनां नूं नहीं सुणनगे लोग कि महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे फलाने थां फलाना गा रहा फलाने थां फलाना गा रहा इहनूं दो वी 50 लख रुपया करोड़ रुपया एक रात दे गाउण दा करोड़ रुपया लैंदे लोग जे कोई लोग बाणी पढ़न वाला होवेगा कोई कथा वाला कोई कीर्तन वाला भाई जी 151 बढ़िया उहनूं 151 251 उत्थे नाल एक रुपया जरूर लैणा उह जिहड़े थोड़े गाउण वाले आ उहनूं क्यों नहीं कहिंदे 5 लख 1 रुपया लैणा उहनूं नहीं कहिंदे 1 रुपये नाल क्योंकि उहदा निरादर हुंदा है इस करके जिहड़े गाने गाउण वाले होणगे उहनां नूं लोग सत्कार दिया करनगे कहिंदा मेरे समें च जिहड़े लोग चंगे होणगे उहनां नूं लोग निंदिया करनगे इस करके कलयुग अपनी रीति दस रहा महाराज नूं कि मेरे समें च की वर्तारा वरतेगा आओ रसना नूं करिए पवित्र।

0: अपने घर भाव शरीर उत्ते भोगया करेगा जो करेगा ए कर करे सो ए कर पाए कोई ना पकड़े किसे ही थाए। इस करके मेरे समय में तो बंदा जेड़े शरीर नाल कम करेगा शरीर खेत जो बीजिया अंत खलोआ आए जेहा बीजा सोलना है करमा संदला खेत
1: बै सो बरक दो बीज ले करै सो भोगे आप।
0: मेरे समय में पिता जी उम्र होवेगी 100 साल दी बंदे दी जेड़ा कोई कर्म चंगा बीजेगा उन्हों सिर्फ 2 गुणा ही फल होवेगा एक चंगे कर्म का 2 बारी फल खा सकता बंदा।
1: बहुत पुत्र बो भाषण इच्छिया सिछिया सार।
0: मेरे समय में लोगों विषय वाशना बहुत होवेगी पुत्र बहुते होंगे से सिख्या का सार इच्छिया होवेगी भाव मनमतीय लोग ज्यादा होंगे जो जी करेगा वो भी कम कराया करेंगे जेड़ी गल चंगी लगेगी उन धर्म मान लिया करेंगे जेड़ी गल विच कोई लगता कि अच्छी गल है उन्हों कहेंगे यह असली गल सार सिद्धांत गल। इस तरह लोग अपने कलयुग दे विच अपने आप ही धर्म नू बदल लिया करेंगे।
1: शूद्र राज कर हीरन बेद जाप हर तार।
0: सो इस तरीके दे नाल जेड़े लोग होंगे ना ये मेरे समय दे विच शूद्र लोग हीर हुंदे नीवे लोग ये वेदां दा पाठ करनगे तो इस तरीके नाल कहिंदे ने जो लोग ने वो हत्थां दा जाप करनगे भाव हत्थां नाल कर्म करनगे शूद्र राज करनगे इस तरीके नाल सारयां दी मैं हर चीज ही बदल देंगा ब्राह्मण तो नीवे कर्म करा देंगा शूद्र तो वेद पढ़वा देंगा शूद्र राज करन ला देंगा सारे काम मेरे समय दे विच पुठे शुरू हो जाएंगे।
1: भगत करै पापी तरै नर नारी दिज सूद।
0: हां एक काम मैं बहुत चंगा करांगा मेरे राज दे विच जेड़ा भी बंदा भगती करेगा ना वो मैं नहीं रखिया भी ये ब्राह्मण तरेगा जां ये तां तरेगा ब्राह्मण है जां ये उच्ची जाति दा नीवी दा मेरे राज दे विच जेड़ा भी बंदा भगती करेगा माई भाई कोई ब्राह्मण है कोई शूद्र है नीच है कोई बच्चा है कोई जवान है कोई तुरक है कोई शंकर वर्णिया है कोई होर प्रकार दे आश्रमा वाला है कोई माड़ा चंगा मेरे समय में जिन्हें कहता सतनाम
1: श्री गुरु साहेब जी
0: सतनाम श्री कहना मेरे समय में जेड़ा भी बंदा मर जाए वाहेगुरु कहे उसे ही तार दिया करांगा क्योंकि मेरे समय में भगती फलेगी बहुत ज्यादा पर लोकी करनगे नहीं कोई अकल वाला बंदा होगा जो भगती करेगा बाकियां दी बुद्धि तो मारी जाएगी विषयां दे विच होर कम्मां दे विच पर मेरे समय में है कि नाम का फल बहुता मिलेगा लोगों को।
1: भगत करै पापी तरै नाम बिना दंडो सक नरक सुरग मम राज।
0: नरकां ते स्वर्गां विच मेरा ही राज होवेगा कलजो कहिंदा नाम तो बिहूणिया बंदिया नूं मैं बहुत दंड दियांगा जिहड़ा बंदा नाम नहीं जपेगा उहनूं चंगा दंड दियांगा जिहड़े बंदे नाम जपणगे उहनां बंदिया नूं मैं कुछ नहीं कहांगा क्योंकि नाम ही मेरे समय विच सारिआं नालों वड्डी चीज है।
1: भूमी दोनो गत्र दे जोनी अर्थ समाज।
0: तो इस तरीके दे नाल मेरे समय दे विच जो तुरने योग तोरा है ना वो लोग ज्यादातर की करया करनगे पृथ्वी पर 2 ही तोरे तोरांगा एक विषय विकार ते एक पदार्थां दी एकत्रता बस 2 ही काम होणगे एक तां लोकी विषय विकारां वाली ज्यादा झुकाव रख्या करनगे ते एक आपदा घर भरिया करनगे समान लिया लिया लिया लिया के लोगों भगती नाल कोई मतलब नहीं होया करेगा बस यही गल्लां करनगे। जेकर विषयां दी गल सुना दो तां तां दुनिया दुआले इकट्ठी हो जाया करेगी जिथे भजन की गल होगी उथों लोग भज्या करनगे इस तरीके नाल संसार दा मेरे समझ वर्तारा होवेगा।
1: ए भावी पूर्ण करो तब जामोगा खोव।
0: ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ

0: महाराज ने इनू करण पर्व लिखण दा ही दिता। बड़ी जड़ी बख्श सी ना महिमा वो प्राप्त कीती है। इस तरीके दे नाल छंदाबंदी नी सोहनी चाल इन लिखी। कवरेश ने जो कवरेश केशोदास दा लड़का होया कवि, ये कवरेश ने द्रोण पुरब जिहड़ा है ना ये भाषा करके सुनाया। ते हंस राम जिहड़ा कवि दी पठानका तो पता लगता है कि हंस राम दा अगे नाम आवेगा। इन्हां ने करण पर्व का टीका किया महाराज के कहने ते अमृत राय ने नहीं किया। सो हंस राम तां दिन करके करण पर्व आरंभ अमृत कवि ने लिखिया। जिहड़ा अमृत राय है उन्हें लिखिया सी सभा पर्व इन्हें। तो यह पटियाले लाइब्रेरी विच भजवीर सिंह जी कहिंदे पिया है यह करण पर्व सभा पर्व जिहड़ा उन्हां कवियां ने लिखिया सी। ते हंस राम लिखदा है कि 60,000 रुपया मैनू करण पर्व का इनाम मिलिया दसवें पातशाह कोलों। जिवें उन्होंने अपनी कविता च लिखिया, प्रथम किरपा कर राख कर गुरु गोबिंद उदार, टका करे बख्शीश तव मोको 60,000। यह करण पर्व भी पटियाला लाइब्रेरी विच ही पिया है। सो इस करके महाराज कवियां नूं 60,000, किसी नूं 1,00,000 रुपया, 2,00,000 रुपया, पहला कवि जी कह आए ने करोड़ करोड़ रुपया भी सतगुरु महाराज ने कईयां नूं बख्शिश कीता है।
1: पावन कवि गिनती मैं नीत रहे निटियर खावे चेत।
0: 52 सोहने कवि, अच्छे टॉप दे कवि जिहड़े सी दुनिया भर दे विच्चों दसवें पातशाह ने अपने कोल रखे। हर रोज उन्हां तों इहदे विच इह किंतु आम लोगों में भावें आ जाए पर आप संगत जो हाँ यह गल है कि सतगुरु भावें किसी के सिर पर हाथ रख के लिखवा लैन किसी भी चीज़ नूं, जां सतगुरु सीधा लिख देन। इहदे उत्ते नहीं किंतु करीदा हुंदा कि महाराज ने उतां कवि तो लिखवाया जां लोग जिवें किंतु करदे इह तां किसी कवि की बाणी है, इस तरह की गल नहीं है। महाराज दसवें पातशाह लिखवाउंदे ने आप कृपा करके। यह आपां थोड़ा ही अगे चल लईए यह प्रमाण अपने सामने आप ही आ जाएगा। एक कवि जिहड़ा आवेगा महाराज के पास जिहड़ा यह दसवें पातशाह नूं कहेगा कि महाराज किथे किसे नूं कविता आउंदी है, जिहड़ा तुहाडे कोल आ जांदा है जिहड़ा तुहाडा नाम भी लै लैंदा है उहनूं कविता रचनी आ जांदी है। इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने कह के लिखवाइया। यह नहीं हुंदा कि महाराज आप कलम पकड़न ते लिखण। अगे तां हुण जिवें कोई अज दे युग विच बंदा यह कहे कि गुरु ग्रंथ साहिब दसवें पातशाह ने आप तां नहीं लिखिया दमदमा साहिब, यह तां भाई मनी सिंह ने लिखिया, एवें लोकां च शंका ही पाउणी है। लो शंका पाने आपां हुण, शंका दी कीहड़ी गल है, शंका खड़ी भी पहलां भी तां भाई गुरदास जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का सरूप लिखिया, यह तां गुरु अर्जन देव जी ने लिखिया हैगा। इउं लोकां जिवें मर्जी शंका खड़ी कर दिओ, दसवें पातशाह कोई भी चीज नूं बोलदे तां आप ही रहे ने भई इहनूं ऐं लिखणा, इहनूं ऐं लिखणा है। उहनां कवियां नूं वडियाई दे दित्ती, चंगा भाई इह तूं लिख। इस तरह सतगुरु महाराज ने बहुत सारिया जिहड़ियां चीजां ने वह कवियां पासों लिखवाइया हन।
1: इक दिन सतगुर सभा लगाए बैठे होते मां दुत पाए।
0: एक दिन का वचन करते ने सतगुरु जी ने सोहनी सभा लगाई हुई है, संगत दूर तक सजी हुई है, बहुत कवियां नूं माण आदर दे रहे।
1: एक कवि चल कर तैं आयो निज विद्या हंकार बढ़ायो।
0: हुण उत्थे एक कवि चल के आ गया है, उहनूं बड़ा अपनी विद्या का बड़ा माण सी, मेरे वर्गा विद्वान नहीं कोई।
1: कीन सवैया अर्थ छपायो अब लाखत गुर ते परखायो।
0: उहने एक सवैया लिखिया, उहदे विच गोज अर्थ लिखिया जिहड़ा किसे नूं नहीं पता लगदा कि लिखिया की होया। इउं वह यह चाहुंदा है कि सतगुरु जी परखण, देखा तां महाराज नूं किन्नी कि सोझी है, किन्नी कि लियाकत है गुरां दे अंदर। वह कवि जिहड़े हुण कई अणजाण हुंदे ने गुरु घर दी महिमा बारे जिन्हां नूं ज्ञान नहीं हुंदा, उन्हें इउं जाणिया कि पता नहीं भी मैं किन्ना कि वड्डा कवि है, पता नहीं मेरी कविता का किसी नूं पता लगना ही नहीं है।
1: हाथ बंद कर बंधन ठाने बैठ प्रभु के निट बखाने।
0: दोवें हाथ जोड़ के मथा टेक के कोल बैठ गया, کول بیٹھ کے اس طرح بولیا
1: دیش دیش میں راور کیرت جس جس تے سنیت بستیرت
0: تہاڈی جڑی مہاراج مہما ہے نا بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے دیشاں دے وچ ودیشاں دے وچ سمندروں پار تک تہاڈی مہما ہے
1: سب بدیا کے گنی بخانے رہے سبا تمری سنمانے
0: سارے پرکار دی ودیا دے جڑے گنی لوک نے کہے جاندے نے ایک چیز ہے مہاراج کتے سانوں کوئی پوچھتا نہیں ستکار نہیں دندا پر تہاڈی سبا دے وچ آ کے سنیا ہے کہ ہر ایک نوں مان

0: मंत्र जंत्र कलमाए।
1: सतगुरु महाराज ने वचन किया कलयुग के समय के विच एक बार जिहड़े मंत्र जंत्र ने तंत्र ने धागे तीत ने टूने डामण ने इन्हां दा बहुत जोर वध जाएगा।
0: लोग करेंगे जगत में मेरा सिख ना चाहे।
1: लोग जगत दे विच ऐसे माड़े कर्म करनगे जिहदे नाल दूजे दा बुरा होवे नुकसान होवे। इस तरह संसार दे जीव मंद बुद्धि कारण पुठे कम्मां दे विच बैणगे पर मेरा सिख इस पासे दी चाहना ना करेगा।
0: एक समय मंत्री बहुत घर घर बाजे बाज।
1: एक समा आवेगा जदों मंत्रां दे सिद्ध करन वाले मंत्र धागे तवीत मंत्र जंत्र करन वाले घर घर बाजा बजेगा इन्हां दा बुरा हाल। आपां पटियाले जी बैठे हैं बाकी शहरां दी खबर नहीं है आपां नूं। इह बॉम्बे कलकत्ते दिल्ली इन्ना पुठा काम है लोग रोंदे ने उत्थे चीका मार मार के। बॉम्बे की संगत यह कहती है भी गुरबाणी च कोई ताकत ही है नहीं। उन्होंने तो सीधा ही यह नकारा ही करता सब कुछ इत्थे आके भाई बाणी च कोई ताकत नहीं है। इन्नी बाणी पढ़ते हैं साडे घरां च ऐ चलदा करदा कोई। सो इस करके उत्थे जाके जदों यह कहीदा भी जे दसवें पातशाह ने इउं करना हुंदा श्री साहब क्यों महाराज लैंदे जंग शस्त्रां नाल ही करके क्यों दिखाउंदे। क्योंकि दुश्मन दा टाकरा सिर्फ शस्त्र ही कर सकदे ने। हुक्म नहीं है आपां नूं करामात दिखाउण दा। सतगुरु कहिंदे जे मैं चाहां इको फूक दे नाल तुरक सारे साड़ दें एक वचन नाल मार दें। पर यह दुष्टां नूं शस्त्रां नाल कटना है दैंतां नूं मारना है। इसे प्रकार ये जिहड़ियां नापाक शक्तियां ने इन्हां नूं कटण वास्ते दसम दी बाणी है। ताइयों महाराज ने दसम ग्रंथ दी बाणी जिन्ने भी जाप साहब दे पाठ हो जाण चौबी साहब दे वध तों वध पाठ हो जाण। इसे करके तो महाराज ने यह चौबी साहब दे पाठ विच इन्ना कुछ कहा कि चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। जिहड़े लोग किंतू करदे ने चौबी साहब ते समा आ जाएगा जब तुसी खुदे कहोगे हां भी चौबी साहब का पाठ जरूर करो क्योंकि इहदी जरूरत पै जानी है जाप साहब की बाणी। फिर इसे प्रकार आईयो सतगुरु महाराज ने आपां नूं गुरबाणी बख्शिश की जपजी साहब जाप साहब सवैये चौबी साहब आनंद साहब का पाठ। सो इहदे विच भी बहुत विचार वाली चीजा ने जिहड़ियां मौके मौके ते आपां नाल नाल विचारांगे। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब 84 लाख जून के मालक ने इन्हां नूं सारे ही मत्था टेकदे ने। सो इस करके जदों दुश्मन नूं कट्टणा हुंदा खास करके उदों फिर जदों दा पापां नूं कट्टणा उदों बाणी पढ़ी जांदी है। जदों ऐसियां भैड़ियां आत्मावां नाल टाकरा पैंदा उदों दसम दी बाणी पढ़दे आ उन्हां नूं चीजां नूं नाश करदे आ। इस तरह महाराज जी ने आपां नूं गुरां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी दसम दी बाणी ताइयों खालसे नूं बख्श

माया भरम जे तू चार दबड़िया जोड़ भी लिया ते धन जोबन का गर्भ ना कीजे। बोलो धन जोबन का इतना ही जितना कागजा का बहुत वड्डा ढेर लग जाए ते कागजा के ढेर के उत्ते मीह पैदे किसी काम नहीं दे कागज ज्यों गल जाएगा नहीं जाएगा ये तेरा एक एक जोड़िया पैसा कागज ज्यों गल तेरे नाल जान वाली कोई चीज नहीं। मैं एक बाणी विच वचन पढ़िया गुरु के सिखो अपने बच्चों के भले लिए आखो वाहेगुरु अपने शरीर के भले लिए आखो वाहेगुरु पढ़िया जैसे कागज के पार मूसा टूट दुआ पत्र समझने की कोशिश करो जैसे कागज के चौंकड़ी मार लो जैसे कागज के पार मूसा मूसा मीन चूहा कहते कागजा के पहाड़ा दे पहाड़ पे ते रात दिन कुतर कुतर कुतर कुतर कुतर कुतर कुतर करता चूहा कुतरी जाता है की करी जाता चूहा वेखे जैसे कागज के पार मूसा टूक गवावत चूहा रात दिन कुतर कुतर कुतर करके कुतरी जाता है मगर अपनी वालों वो की कह रहा मैं किसी काम लगा आखो वाहेगुरु। इस तरह असि रोज सवेरे दुकान ते चले गए रात नूं आ गए सवेरे नौकरी चले गए रात नूं आ गए असि की कहने असि की लगे काम लगे जिस तरह कागजा के पहाड़ा के पहाड़ चूहा कुतर कुतर के गवाई जाता है इतना ही इंसान अपने श्वासा की पूंजी उतरी जाता है जैसे कागज के पार मूसा टूक गवावत काम नहीं गवारी उस गवार नू ए नहीं बेचारे नू पता कि मैं इन सुंदर कागज कुतर कुतर के रखी जाना सानू भी कोई ज्ञान नहीं असि कभी ही आ श्वास रोज दे कुतरे ने जिन्हों का फायदा ही कोई नहीं कुतरक कर करके फालतू गल्ला कर करके पानी बलो बलो के जिन्हां गल्लां विचों कुछ नहीं निकलना बादल जे तू गुरमिंदर सिंह तू की लेना तू अपनी बाजी बारे वेख किते तेनी जन्म जुए किते तू ना हार जमी तू अपनी बाजी वाल वेख तू की कर रहा है तू अपने अमृत वेले उठ के अपने ते कैमरा मार आखो वाहेगुरु। संत आदर्शक जी मस्तुआने वाले महापुरुष कहिंदे बंदे नू अपनी रोज दी मूवी बनानी चाहिए मैं की कर रहा आखो वाहेगुरु आखिर मैं किन्ने बजे उठ रहा मैं की बोल रहा मैं की कर रहा ते फिर उस मूवी नू चंगी तरह वेख के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे उपदेश नाल मनाउणा चाहिदा है किते मैं पुठे रात नहीं पै गया मैं गवाउण तां नहीं लग गया कोई कमाई वाला वचन चल रहा है साहब कहते लालच लागे जन्म गवाए माया परम भलाएगा जे माया दे परम च पै के चार दबड़ियां जोड़ भी लिया तू अपनी अलमारियां भर लिया बैंक भर ले ये धन ते जोबन दो चीजां धन जोबन इन्हां दा गर्व ना कीजे ये कागज ज्यो गल जाएगा अगे आखे जा जम आए जा बोलो ना जी सारे जा एक दिन किन्ने आना है जमा आना जमा ने आना है हरदीप नु लैन आखो वाहेगुरु। जा जम आए केस गहे पटके फड़के केसा तो तेन पटका के उन्होंने फड़के लै जाना है ते तू हाथ जुड़ जुड़ के आखी एक रात छड़ जो ता दिन किशना बसाहेगा एक दिन की तेन मोहलत नहीं मिलनी जिदन ओ लैन आ गए आखो सतनाम श्री किसी ने आखिया मैं अपने केस छा लू उन्हों को मेरे जोर बड़ा मैं बड़ा घ्यो खाता मेरे सत भरा छा लन गए मेनू ते उथे लिखिया उन तकड़े पाए हाथ बोल उन तकड़े पाए बड़े तकड़े हथा फटे तेन छना नहीं होना लै जाना है ता दिन किशना बसाहेगा सिमरन आ चीजा दो कीतिया ना सिमरन किया ना भजन किया सिमरन भजन दया नहीं कीनी ए तिने चीजा तेन भुलिया रही एको काम ते लगा रही एक भजन बड़ा प्यारा गुरबाणी विच आखो सतनाम से जिन्हां बुजुर्गां नूं पता होण ते तेलिया दुकाना रही फुलू कहते कोलू।

सिमरन का याद रखा करो, प्रभु का सिमरन गर्भ ना बस है, प्रभु का सिमरन दूध जामा ये ऊपर घर चो भजा चाहते हो बाबिया को गलत बीता वाले को कदी कबर से तुरे करता जीव कदी कितने तुरे करता सिर्फ चौदह मेरे घरों का कलेश नट जाए महाराज मेरा काम चल पवे तो महाराज पातशाह की कह रहे सिमरो सिमर सिमर सुखावत अगे पढ़ो की लिखे क्या इतो भी मिट जू फिर कबर से की लैन जाते ना झूठे पेंदे हो गुरु तो नाले धागे तवीता को जाके गुरु तो झूठे पेंदे गुरु तो झूठे ना पाओ एक बचन कह के समाप्ति करूंगा तुम गुरु ग्रंथ साहब की कहते रे एक बार नोट करो रेजी नलज रेजी नलज की कहते विशर्मन वेरलो कि मिठा बोलता सतगुरु पर आ बचन इतने आके क्या रेजी नलज लाज तो हे नाही ये नलज विशर्म जीव तेन शर्म नहीं आती आखिर की गलती होगी ए गुरु का सिख हो गया कबर के मथे टेकन दे हर ताज करत हर ताज ताज मैंने छड़ के इनू छड़ के करत कानून ते जाई होर ना वल तुरया जाना है ते फिर दृढ़ करवाया कहिंदे नाले तू कहिना हमरा ठाकुर सब ते उच्चा कहिंदा नहीं तू कहिंदे सब ते उच्चा तेरा ठाकुरा ते फिर उन्हां कोल की लैण जाना है जे जिउंदा तेरा ठाकुरा ते मरिया कोल की लैण जाना है सतनाम श्री ये गल ते गुरबाणी दा वचन के जीवते को जीवता मिले बोलो जी इतना लिखा कि जीवते को मुए को मरे नु मरिया मिलता है जीवदे नु जीवदा मिलता है तुरदे नु तुरदा मिलता है उड़दे नु उड़दा मिलता है ते जेड़े फिर मरिया दी कबरां दे उत्ते चले गए फिर वो जीवदे थोड़े ने मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी कहते रहे तेनु शर्म आनी चाहिए जीव तू धन गुरु ग्रंथ साहब वर्गा ठाकुर छड़ के इधर उधर धागे पूरी तरह के चक्करां दे ना पै गुरुद्वारे आया कर गुरुद्वार गुरु द्वारे हुए सोची पाई सी बोलो गुरु द्वारे हुए इतने गुरुद्वारे आया कर वेख इतने किसी नु कोई धागा नहीं मिलता कोई प्रीत नहीं मिलता इतने इको ही दवाई मिलती है सर्व रोग का बड़ा मिठाई बड़ा मिठाई बड़ा मिठाई गुरबाणी ने विच लिखा है हर बिन कछु न लागे बोलो हर बिन सारे बोलोगे हर बिन भगतन को मीठा भगतन को मीठा कोई गल दुनिया की कोई लक्चर कोई विचार संत जना नु चंगा नहीं लगता एक रब की बंदगी तो बिना हर बिन कछु न लागे भगतन को मीठा अगे लिखिया आन स्वाद सब फिक्या बोलो आन तार कितना पता लगा गुरु अर्जन देव साहब ने कर निर्णय दीठा कर निर्णय करके गुरु ग्रंथ साहब किन्ने ने देखा है कि वाहेगुरु शब्द जिहड़ा कोई शब्द दुनिया ते मिठा नहीं जिन्हां दे अंदर ये रस वग पिया जिन्हां नूं नाम दा रस आ गया मेरे सतगुरु पातशाह जी किन्ना प्यारा वचन मेरे कान विच इन्ना क्या दो चार मिनट हो गए एक बार आखो सतनाम श्री वाहेगुरु जे तुसी अकागरता बख्शो ते धन गुरु अमरदास महाराज जी आ रचना जिहड़ी पनीर खांदी दुध पींदी जूस पींदी तरह तरह के खाने खांदी आ उहनू रचना नू खातबो के क्या ए रचना पहलो ए कहो हां ए रचना गल करो इहदे नाल ए तुम अनरस राज रही जेड़ा रस तेनू गुरु ने दसिया आखो सतनाम श्री वाहेगुरु कहते हर रस हर नाम हर रस भोगो हर नाम हर रस भोगो ये रसना तू को वाहेगुरु की गल छड़ के चुगलियां बड़ियां कर दी क्यों नहीं करते हैं आखो सतनाम श्री बोलो ना संगत साहब विच बैठे हो एक बार सच ता बोलो चुगलियां कर देना आपां कर दे एक गल हुण गुरबाणी का फैसला सुन दे चुगल ते निंदक की मौत ते कराम दी चुगल ते निंदा करने वाला पहलो जे हुण तुहानू इह गल दस दित्ती जावे ते हो सकदा है तुसी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं बेनती करो महाराज मेरी रसना चुगली ना करी बाणी विच लिखिया वचन है कि जिहड़ा चुगली करदा है ते निंदिया करदा ओह रुल के मरदा रुल के ओहदी पछाण नहीं लैंदा कोई पानी नहीं पिउंदा ओहदी किरिया नहीं कोई सामदा
ਸਭ ਗੰਦ ਉਹਦਾ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰੁੜ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਰੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨੀ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨੀ ਪੀਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੀ ਕੋਈ ਸਾਂਭਦਾ, ਸਭ ਗੰਦ ਉਹਦਾ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਚੁਗਲ ਨਿੰਦਕ ਭੁੱਖੇ ਰੁੜ ਰੂਏ, ਚੁਗਲ ਨਿੰਦਕ ਭੁੱਖੇ ਉਹਨਾ ਹੱਥ ਨਾ ਕਥਾਉਂ ਪਾਏ, ਹੱਥ ਹੀ ਨੀ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਕਚਰ ਜਾਣ ਲਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਣ ਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਸ ਪੀਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਰੂਟ ਖਾ ਲਾ, ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕਿਤੇ, ਜਿਕਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨੀ ਬੁਝਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ।

सतगुरु कहिंदे कर हर ट माला टिंड परो ध्यान दियो जी जग दियां रूहां अकादरता बख्शियो कहिंदे आ जिहड़े सवास आ इन्हां नूं आ बजुर्गां ने वेख्या खूह वगदे सी खूह आखो वाहिगुरु खूहां दे विच इक चीज पानी भरन नूं जिहड़ी वगदी सी उहनूं कहिंदे टिंड माल ते जिहड़ियां माल दे उत्ते हुंदियां सी उहनूं कहिंदे टिंडा उहनूं टिंडा कहिंदे कर हर ट इक खूह बणा आ जिहड़े सवास ने तेरे इहनां नूं माला बना के माल बना के एक एक सवास नूं टिंडा बना महाराज इस माल नूं खिचे कौन अकादरता बख्शे इस माल नूं जिहड़ा तूं आए नूं खिचे कौन कहिंदे इस पीतर मन योग सरवण कीता इस पीतर बलदा की जगह ते इहनूं खिचण नूं किहनूं योग मन जोड़ो जो का मतलब जोड़ दो जो दो आप कहने बलद जोड़ दिते ए खूह दियां माला टिंडा खिंचण लई मन नूं बलद बनाओ ते मन तां साडा सिमरन करदिआं भी दौड़दा रहिंदा है साहिब कहिंदे ने तूं मन नूं जोड़ के इन्हां टिंडा नूं खिच ते अगे जाके कहिंदे अमृत सिंचो अमृत सिंचो अमृत ते भरो क्यारे बोलना अमृत सिंचो भरो क्यारे क्यारे क्यारे जेडे खेती बाड़ी करते उन्हां नूं पता है एक छोटिया छोटिया वट्टां पा के खेत दे विच की पा दी दे खेती बाड़ी करते तुहानूं पता पिंडां दे रहिण वाले खेती बाड़ी करन वाले नूं पता क्यारे पा दी दे साहिब कहिंदे ने अंदरों मन नूं जो के आ जिहड़ी सवासां दी टिंडां दी माला इहदे राहीं मन नूं जोड़ के वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु करके क्यारे भर क्यारे क्यारे तेरे सुनिए ने सुख रहे ते मैं धन गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी पुछिया महाराज शरीर ते जिहड़े क्यारे ने आखो सतनाम श्री गज के बोलो सतनाम खेतां विच क्यारे हुंदे इत्थे क्यारे किहड़े कहिंदे अखां नाम जपण वाले दीआं अमृत नाल भर जांदियां अंदरों आना के अमृत अखा जो अमृत बोलने लग पा तो सतनाम श्री पढ़ते नी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट बोलो ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट ब्रह्म ज्ञानी इना सिमरन अंदरों जुड़ के करता ओदिया दृष्टि चो अमृत बगन लग पा ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी बरसन लग पा है फिर आखिर महाराज होर कि क्यारा भरीये महाराज कहते रसना अमृत नाल भर जी गल कर लगता वा ते कहते फलाना बंदा वजन करता मुंह चो अमृत डोलता नाम जपण वाले की रसना कदी फिका नहीं बोलती नाम जपण वाले की रसना सदा मिठा बोलती अमृत वर्गा साहब कहते ने मन नूं जो इस सवासा की माला बना मगर यह जे बरतना होया जे मन नूं तूं ना विच जोता सिमरन विच मन नूं ना जोड़िया ते टिंडा दी माला चलनी नहीं थल्यो अमृत आउणा नहीं ओह इतना है गुरसिखा प्यारिया सारी रात लगा रहेगा बनना कोई मन नूं विच जोड़ना जरूरी है अमृत सिंचो भरो क्यारे ते अगे लिखे तो माली के ओह तो गज के बोलो ना तो

बुझ कर अपना हर जस रे मन गायल जो संगी है तेरो अवसर बीतो जात है गयो मान लय मेरो संपत रत धन राज सो हत ने लगायो काल फास जब कर परी सब भयो करायो जान बूझ के बावरे काज जगारियो पाप करत सुख ज्यो नहीं ने कर बनवारियो जे विद गुर उपदेसे आसो सुन रे भाई जे विद गुर उपदेसे ध्यान दियो जे विद गुर उपदेसे आसो सुन रे भाई नानक कहत पुकार के नानक कहत पुकार के कहो प्रभ शरण आई कहो प्रभ शरण आई नानक कहत पुकार के नानक कहत पुकार के नानक कहत पुकार के कहो प्रभ शरण आई कहो प्रभ शरण आई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह गुरु जी का परिवार जी का खालसा।

0: बहुत बहुत।
1: एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जोगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। करो कृपा सारे आखो आद सच जोगाद है भी सच नानक जुड़ के आखो जी।

तरला पाओ तरला, जरा शरीर विच उचा लियाओ कि मैं जन्मा तो विछड़ी हां, तो मैं अपने बापू नूं कह रही हां महाराज मैनूं विछड़ी नूं मेल लो।

निर्भाव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हुसी भी सच करो कृपा जुड़ के आखो आद सच जुगाद है भी सच नानक हुसी

एक मिनट लिए शांत चित होके प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। मार्ग कहिंदे ने रस्ते नूं, सारा संसार रस्ते तो भटक गया, भूले सिख भुल गए सिख। यह नहीं कि संसार ते भुलिया सी। अज मैं एक लेख पढ़ रहा सां, 500 साल तो उत्ते समा हो गया है। धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के उस दीपक नू जगत विच जगया जिदे बारे भाई गुरुदास जी कहिंदे मिट्टी धुंद जग चानण हुआ। मगर जे असी अज सिखां दे घर विच झाती मारीए ते की भाई गुरुदास जी दे उस दीपक का चानण साडे घरां विच हो गया है। उसे तरह वर्त रखदे आ, उसे तरह श्राद्ध करवाउने आ, उसे तरह पीरां फकीरां दीआं पुछणा पाउंदे आ, उसे तरह पंडतां नूं न्यूयॉर्क फोन करके अपने भविष्य बारे पुछदे आ, उसे तरह इंग्लैंड वाले पीरां नूं पुछदे आ। साडे घरां दे विच्चों ओह अनेरा अजे दूर नहीं होया जिहड़े अनेरे नूं दूर करन लई दीपक वेख के भाई साहब ने कहा सी सतगुरु।

रामा बोले राम बिना को बोले रे, विच कोई बोलने वाला हो रे, सबके मद अलब तो रहे, जो किश कहना सो आपे कवे, वो कोई शक्ति हो रहा जिदे नाल गुरु सानू जोड़दा है। भुलिया भटकिया नू सतगुरु कह रहे ने प्यारियो, ना ये देह बोलने दे समराथिया इहदे विच कोई बोलदा है, ना सूरज रोशनी देने दे समराथिया इहनू कोई रोशनी दे रहा है, ना चंद्रमा कोल रोशनी उहनू भी कोई रोशनी दे रहा है। वो जिहड़ा चंद्रमा नू रोशनी दे रहा है, वो जिहड़ा सूरज नू रोशनी दे रहा है, वो जिहड़ा देह दे विच बोल रहा है, उहदे नाल जोड़ के मेरे सतगुरु पातशाह जी कहिंदे ने आद अंत एके अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। आओ ओहदे नाल जुड़िए, शब्द दी विचार पहलो आरंभ करन तो पहलो एक बार जिहड़े दीआं हड्डियां सिद्धियां करो मेरियां बच्चियां वीर, गुरसिख प्यारे गुरु नानक निरंकारी दे घरों अमृत पीण लई एक मन एक चित हो के आनंद विच आण के जपो वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु।

0: आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। गज के आख्या करो तुहाडे परिवार दा भला, तुहाडे जीवन दा भला, पंथ दा भला। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। तरला है ऐरकां दे प्रचार दे विच ते बहुता तरला पाउण दी हुण जरूरत है, क्योंकि नेहरियां बहुतियां आ गईयां। एक पंछी आ सिख पंथ जिहड़ा है ना, एक पंछी लिखिया गुरबाणी दे विच, सरवर पंखी हेकड़ो। बोलो सरवर पंखी। सरवर दा पता है सरोवर। कहिंदे सरोवर दे कंडे उत्ते, इस दुनिया दे सरोवर दे कंडे उत्ते सिख पंथ रूपी एक पंछी है आण के बैठा, शुद्ध मोती चुनने वाला। सरवर पंखी हेकड़ो ते फाई वाल पचास, इनू फाइया लैके जेडे फंड वाले ने ओ मेरे सतगुरु ने लिखिया वा, पंजा ने लाख अहेरी एक जियो। इथे आख्या लखा शिकारी ने मगर एक सिखिया, केता बंचू काल किन्ना चिर बचूंगा इन्हां दे कोलों। जे तुसी सुचेत ना होए, जे अपनी कौम ना जागी, जे गुरु दे सिखो तुसी एक एक बच्ची बच्चे ने अपना फर्ज ना पछाणिया, ते मैं गुरु दी हजूरी च कह रहा इनू खतरा ते कोई नहीं, इन्हें मिटना ते संसार विचों है नहीं, मगर नुकसान बहुत हो जूगा। आने वाली सदियां तक घाटा पूरा नहीं होगा, अंधेरियां आ गई जे बहुतियां, ते सुचेत हो जाओ, उठो अमृत वेले, इन्हां तो बचोगे कि तरह। हुण हर बंदा पुछदा जी बचा की है, जे पंथ नूं खतरे चार चपेरे पै गए ते इहदा बचा की है। इको ही बचा वा कि तुसीं सिमरन अभ्यासी बन जाओ। तत्ती वाओ ना लगे ही कदों, जदों पार ब्रह्म शरण आई, इहदी शरण विच आ जाओ। सिखो साडे दुश्मन भी तां बने ने, असीं तां अज तक नुकसान विच गए हां, असीं भी गुरु नानक दा पल्ला छड़ दित्ता। ते आपां जदों मर्दाने ने वेख्या महाराज इनिया अनेरिया आ रही ने उड़ा के लै जाणगियां, वेखो लाल अनेरी आउंदी मूंह अड्डी, पता नहीं किन्ने राक्षस विच तुरे आउंदे ने। ते मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह कहण लगे मर्दानिया इह अनेरी तेरा कुछ नहीं वगाड़ूगी। आख्या मारक इन्नी अग दी अनेरी आ रही उड़ा के लै जू, मर्दानिया कुछ नहीं कहूगी तेरे मुंह चो जे ना रुकिया सतनाम श्री। जे वाहेगुरु ना रुकिया ते अनेरिया तेन कुछ नहीं कहणगी। मेरी हाथ जोड़ के पंथ नूं बेनती, तुसी पंथ रूप विच बैठे हो ते मैं इस गुरु नानक दे घर दा टुकड़ खाण वाला कुत्ता तुहानूं पहलों सचेत कर रहा। जे हालात तो बचना है ते नितनेमी बन जाओ। जे हालात तो आउण वालियां ने कई बंदे सोचदे, कई नहीं सोचदे, कई कहिंदे खाणा पीणा हसना सौणा बस इन्ना कुछ ही है, मगर थोड़ा जिहा सचेत हो जाओ। कोई धरती की विपता नहीं जे जिहड़ी इस वेले पंथ दे दुआले नहीं होई। मेरी हाथ जोड़ के बेनती, जे सारियां मुसीबतां तो बचना वा, जाको मुश्किल अत बने ढोई कोए ना, दे लागू होए दुश्मना साक भी भज खले। इथो तक होर मुश्किल की बन सकती है कि अमेरिका की सब तो वड्डी एजेंसी जिन्हों CIA कहिंदे हो, उन्हें भी लिख दिता है कि सब तो दुनिया की नामराद बीमारी जिहड़ी एड्स है ना, यह सिखां तो फैली। यह छोटा जिहा दोष नहीं जिहड़ा तुहाडे ते लगा है, ये दुनिया च बदनाम करनू केवल इको ही दोष बड़ा है। तुहानू नफरत करनगे हवाई अड्डे खलोते लोकी, तुहाडे कोल बह के राजी नहीं होणगे लोकी, जो उन्होंने अखबार विच लिख दिता है कि दुनिया की सब तो भयानक बीमारी जिहड़ी एड्स आ जिहदा कोई इलाज ही नहीं, यह सिखां तो फैली। गुरमुखो इहदे तों बचना कितना है, सच्चे मार्ग चलदिआं उस्तत करे, सच्चे मार्ग उत्ते आ जाओ। दुनिया के अखां विच घट्टा पा दूगा मेरा गुरु नानक, सारे तुहानू सज्जण समझण लग पैणगे, सानू गुरमुख समझ लग पे, मगर साडे चेहरे तो हुण गुरमुखताई लभदी नहीं, साडे चेहरे तो नितनेम लभदा नहीं, साडे चेहरे तो नजर नहीं आउंदा सतनाम श्री वाहिगुरु दा सिमरन। मेरी हाथ जोड़ के आप जी नूं बेनती है, कौमां जीवन दे विच ओही सफल हुंदियां ने जिहड़ियां अपने मुढ नाल जुड़ियां रहिंदियां ने। मेरा सतगुरु कृपा करे, रहमत करे, बचन तां करन नूं बहुत दिल करदा फिर सही। साहिब जी कहिंदे काली जिन्नी ना रावया, बोलो काली जिन्हां ने काले वालां विच परमेश्वर नूं नहीं पाया, धौली रावे कोए, धौली रावे। बाबा फरीद जी कहिंदे धौली दे विच ते फिर किसे ही रावया है ना, जिन्हां ने काले विच काले वालां विच जदों भज सकदा, बह सकदा, उठ सकदा, नाम जप सकदा है, जे उदों परमेश्वर की बंदगी नहीं कीती ते धौलियां दे विच ते कदों परमेश्वर मिलण लगा है। हां जी
1: कल साई स्यों पिरहड़ी रंग नवेला होए।
0: बाबा फरीद जी सुचेत कर रहे ना, वैसे कहिंदे पिरहड़ी हुंदा प्रेम, कर साई स्यों पिरहड़ी। फरीदा उस मालक नाल प्रेम कर, ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਨੋਖਾ ਤਾਜ਼ਾਪਨ ਦਿਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਵਿਆ ਧੌਲੀ ਵਿਚ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਈ ਨਾਲ ਬਿਰਹੜੀ ਕਰ, ਪਿਆਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵੇਖਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ,
1: ਮਹੱਲਾ

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जुड़ जाओ वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वचन नु समझो। कहिंदे ने गुरु अर्जुन देव महाराज पातशाह कहिंदे मेरा गुर मेरा गुरु पूरा सुख दाता, मेरा पूरा गुरु जड़ा है कादा दाता है जी। सारे आखो कादा सुखां दा दाता है, सर्व सुखां का दाता सतगुर ताकि शरणी पाईए। इथे कहिंदे ने मेरा जड़ा पूरा गुरु आ सुखां दा दाता है। ते अगले वचन वाल मैं आप जी की तवजो देवनी चाहना है। कहिंदे बंधन काट करे मन निर्मल, केड़े बंधन ने जिन्हां नूं कट के ओ गुरु मन नूं निर्मल करदा है पवित्र करदा है। गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह दा जदों तुसी ए वचन पढ़दे हो भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वडभागी पाया, सिमर मना राम नाम चतारे बासरे हिरदे गुर चरण बिहारे। ते अगे जाके मेरे सतगुरु कहिंदे काम क्रोध लोभ मोह मन लीना आ जे बंधन, काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, लीना दा इत्थे मतलब लीन हो गया। कादे विच काम क्रोध लोभ ते मोह दे विच मन हो गया लीन, ऐसा फस गया ऐसा फस गया। कहिंदा इत्तो ते बाहर होया ही नहीं जा सकदा, मोह ते छड्डिया ही नहीं जा सकदा। कोई कहिंदा जी काम बहुत बली है ये छड्डिया ही नहीं जा सकदा, कोई कहिंदा जी मेरा गुस्सा हटदा ही नहीं, कोई कहिंदा लोभ मेरे को छड्डिया ही नहीं जांदा। ऐसा लीन हो गया इहदी गुलामी विच फस गया। ते मेरे सतगुरु पातशाह जी कहिंदे ने काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, जदों लीन ही हो गया ते होर कोई चारा ही ना रहा। ते फिर गुरु दी शरण विच आण के इन्हे हाथ जोड़ के आख्या एक कोट पंच सिक दारा पंचे मांगे हाला। सतगुरु एक ऐसे किले दे विच मैं रह रहा जिहदे विच पंज सिकदार ने काम क्रोध लोभ मोह हंकार, ते पंजे ही मेरे कोलों आण के मामला मंगदे ने। आखो सतनाम श्री पंचे मांगे हाला, जिमी नाही मैं किसी की बोई ऐसा देन दुखाला। हे महाराज इना दुखी करदे ने, इतना दुखी करदे ने, मैं किसे दी जमीन भी नहीं बोई, ए पंजे आण के मेरा जो कुछ हुंदा लुट के लै जांदे ने। हर के लोगा मौको नीत डसे पटवारी,

वो पूर्ण पुरख विधाता है। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पिता जी जेडे तुहाडे पिता जी मेरे पिता जी ने ना सारिया दे अपने पिता जी कौन ने धन गुरु जिदन अमृत छकाया से की आखिया सी अज तो तुहाडे पिता जी कौन ने धन गुरु गोबिंद सिंह साहब। एक घर विच लेटे पैसा गुरसिख प्यारे पंज प्यारे साहबान नाल अमृत छका के आए ते कोई बचन करदा सी इधर उधर दे विच तीसरा बंदा जिहड़ा विच सुत्ता सी ते उस कमरे दे विच धन गुरु गोबिंद सिंह साहब की एक ऐसी तस्वीर लगी सी तुसीं भी कई बार वेखी हो। सतगुरु ने हाथ विच कागज फड़िया है ते मोर दे खंभ नाल कुछ लिख रहे ने। तस्वीर वेखी होगी गुरु गोबिंद सिंह साहब की नवी छपी दीवार दे उत्ते। एक जाना कहिंदा भाई गुरमुखा प्यारिया इधर उधर दीआं गल्लां ना कर वेख ला लिख रहा ई एक एक गल साडी लिख रहा ई। ते दूसरा बंदगी दे विच रत्या कहिंदा कीवता लिख रहा के लिखे जेड़े पिछले उन्हां दे कांडे मार रहा ध्यान दिओ जेड़े पिछे लिखे सी उन्हां दे उत्ते कांटे मार रहा है कि लै गुरमुखा प्यारिया तू सतगुरु गरीब नवाज पातशाह दा अमृत संचार करा के इनिया रूहां नूं गुरु दे नाल चढ़ा के आयो जे कोई पिछला कुकर्म माड़ा होया भी आ ते पूर्ण पुरख विधाता विधाता हुंदा लेख लिखण वाला वह आपे लिख सकदा वा ते आपे ही मेट सकदा है। आ हुण जिदन मैं आया ना एले तो ते एक मेरे तो अगे खलोता सी इमीग्रेशन दे अगे वह चैकिंग करदे ने अजकल जेडे विजिटर वीजे दे आउंदे उहनां नूं ओ इंट्री देन वाले ने गुरमुख प्यारे हो पहलो ओनू एक महीने की इंट्री दी बड़ा हौसला बजा इस वचन दे विचों आखो सतनाम श्री वाहे। नहीं तो कई बार सोचते हुंदे हां भी जो परमेश्वर ने लिख दिता एक बार ओनू मिटिया नहीं जा सकता मगर इस वचन ने एक नवा अंदर बीज पैदा किया जदों उन्हें इंट्री एक महीने की ला के काला जिहड़ा बैठा सी इमीग्रेशन अफसर उत्ते अपने सैन कर भी दिते ते फिर दोबारा ओनू पुछदा तू किन्ना चिर रहना ध्यान दिओ तू इत्थे किन्ना चिर रहना है अकागरता बख्श समझ आ रही ना ते उन्हें आख्या जी मैं जुलाई तक रहना है। अपने हथी मोर लाई आपे लिखिया ते आपे उस मोर नू कट के अपने सैना नू कट के ते जुलाई तक करके ते उत्ते सैन कर दिते। मैं आख्या वाह तू ते हाली किसे दा नौकर है ते तू अपने लिखे नू कट के उत्ते सैन करके एक दे चार कर सकदा वा ते जिहड़ा आप मालिक आ सृष्टी दा ओ जो मर्जी लिख सकदा ते जो मर्जी मेट सकदा है नवे लेख लिख सकदा है। इस करके एक बार आखो

0: चरण
1: कमल तेरे तोए तोए चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा
0: चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा चरण कमल तेरे

मेरे लाल के लालो, तुझे कंघा तो करा दूं, कंघा करके शीश पे छोटी सी पगड़ी सजा दूं, ऊपर छोटी सी कलगी लगा दूं, मौत से विवाह कराने से पहले मेरे बच्चों तुझे दुल्हा तो बना दूं, मौत नाल विवाह करन चले जे, किते रोंदे ना जायो, ए गाउंदे जायो।